चित्ते अंति शांति ती ती ती डू डाय चिम याय हो ची डू डाय डू चिम यू डेम डेम आ ता दिगं शिव